0: take me to school. And when she did, I'd feel extra specially cool.
1: आप जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर एक्विटी मैटर्स सुन रहे थे पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर शाम के 7 बज रहे हैं रेडियो हार्मनी पर मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता

रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर इस एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, गंगा दशहरा 5 जून को है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और वाराणसी में मनाया जाता है। हम आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत माँ गंगा के आह्वान के साथ करेंगे।

गंगा आए कहाँ से, ये था फिल्म काबुलीवाला से एक गीत जिसमें गंगा का आह्वान है और इसे गाया था हेमंत कुमार ने। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी और इसके बोल लिखे थे गुलजार ने। आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता। मित्रों 3 जून को विभुवन संकष्टी है, 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 को अधिक भानु सप्तमी, 8 का अधिक कालष्टमी और 11 को परम एकादशी पड़ती है। 5 जून को गंगा दशहरा है, 7 को ईद अल अधा और 8 जून से कोट्टियूर उत्सवम है, 11 को साग दवा जो माउंट कैलाश के रीजन में मनाया जाता है, 1 से 5 जून शिमला समर फेस्टिवल जो अब चल रहा है शिमला और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और इसी तरह आगे आने वाले हम फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। मित्रों सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये यूं तो 21 जून को पड़ता है लेकिन इंटीग्रेटेड कल्चर्स ACT, इंटीग्रेटेड वुमेन्स नेटवर्क और चेरिश इंक इसे मना रहा है 3 डेट्स पर। आवर थीम इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो जॉइन अस फॉर अ प्रैक्टिकल सेशन एंड Q&A और जस्ट कम एंड लिसन टू द टॉक by Vijay Arora. The title is Building Your Home Yoga Practice. ये होगा Saturday 13 जून को 8 से 9:30 सुबह। ये फ्री इवेंट है लेकिन बुकिंग इसके लिए एसेंशियल है, ट्राई बुकिंग पर आप बुक कर सकते हैं और इसका कोड है DMUUR। तो इसका जूम लिंक जो है आपको ट्राई बुकिंग पर जब आप रजिस्टर करेंगे तब मिल जाएगा। 2 और इवेंट्स हैं और 11 दिसंबर को एक हमारा इवेंट है, 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा स्थापित किया और हमारा थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम देर आर टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स ऑन योगा, आयुर्वेदा, वेगस नर्व एंड फिजियोथेरेपी and these will be by Robin Lewis, Indu Narayan, Subhash Dang and Sonam Batra. और ये इवेंट है इतवार को 14 जून को 10:45 पर for a start at 11 AM and it will go on to 3 PM. It is at the Canberra Labour Club, 51 Chandler Street, Belconnen, ACT. And the cost is $15 with a lunch box included and light refreshments. Iske liye bhi booking essential hai, to try booking par zarur jaiyega. Aur code hai DMFET. Aur teesra event hoga isi series mein, online talk hai, Yoga Beyond Asan. What is yoga really? ये टॉक है एलन गुड करेंगे, डायरेक्टर ऑफ योगा मंदिर इन कैनबरा, और होगा थर्सडे 18 जून फ्रॉम 8 to 9 PM और ये फ्री इवेंट है। इसके लिए भी बुकिंग एसेंशियल है, ट्राई बुकिंग पर जाइएगा, कोड है DMFEV। मित्रों आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी और मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता। आज हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं तो उसका हम

आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत की एक ऐसी यात्रा पर जहां सुर केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जीवन की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी है उस कलाकार की जिसने भारतीय फिल्म संगीत की परिभाषा बदल दी, जिसने गांव की पगडंडियों, खेतों की सरसराहट, मंदिर की घंटियों, लोकगीतों की आत्मा और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को एक साथ जोड़कर एक नई संगीत भाषा रची। ये कहानी है इलैया राजा की। संगीत की दुनिया में उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, मैस्त्रो, ईसाई ज्ञानी यानी संगीत का ज्ञानी, और करोड़ों प्रशंसकों के लिए वे केवल एक संगीतकार नहीं बल्कि एक भावना है। लेकिन हर महान यात्रा की तरह उनकी यात्रा भी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी। इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को तमिलनाडु के थेनी जिले में एक छोटे से गांव पन्नईपुरम में हुआ। आज जब हम उनके भव्य संगीत को सुनते हैं तो यह कल्पना करना कठिन है कि उनका बचपन अत्यंत साधारण परिस्थितियों में बीता था। उस समय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में बिजली और आधुनिक सुविधाएं भी सीमित रहती थी।

ये था फिल्म तालापति से एक गीत जिसको गाया था एसपी बालासुब्रमण्यम और स्वर्णलता ने. इसका संगीत दिया इलैयाराजा ने और इसको प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को मणिरत्नम ने और उन्होंने ही डायरेक्ट किया था. गांव के त्योहार, लोक नृत्य, धार्मिक आयोजन और लोकगीत, यही इलैयाराजा की पहली संगीत पाठशाला बने. इलैयाराजा ने बाद में कई बार कहा कि उनके संगीत की जड़ें गांव की उसी मिट्टी में है. उनके लिए संगीत किसी किताब से नहीं बल्कि जीवन से निकला हुआ अनुभव था. जब खेतों में काम करने वाले लोग गीत गाते थे, जब मंदिरों में भजन गूंजते थे, जब गांव के कलाकार लोक धुनें प्रस्तुत करते थे, तब एक छोटा बालक उन सुरों को अपने भीतर संजो रहा था. उसे शायद तब पता नहीं था कि एक दिन वही धुनें भारतीय सिनेमा को बदल देंगी.

புத்தம் புது காலை மூவி தி அலைகள் உய்வத்தில்லை ஓர் இஸ்கோ காயா தா எஸ் ஜானகி நே இஸ்கே போல் லிக்கே தே கங்காய் அமாரன் நே. तो दोस्तों, किशोरावस्था में इलैया राजा अपने बड़े भाइयों के साथ एक भ्रमणशील संगीत मंडली से जुड़ गए. यह मंडली गांव-गांव जाकर कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी. बसों में लंबी यात्राएं, साधारण मंच, सीमित संसाधन, यही उनका संसार था. लेकिन यही वह दौर था जब उन्होंने लोगों की संगीत पसंद को गहराई से समझा. उन्होंने देखा कि संगीत केवल तकनीक का विषय नहीं है. संगीत तब जीवित होता है जब वह सीधे लोगों के दिल तक पहुंचता है. बाद में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही बना. वे अत्यंत जटिल संगीत भी इस तरह रचते थे कि आम श्रोता उससे तुरंत जुड़ जाते थे.

0: En inie pon nilave. Ye tha KJ Yesudas ki awaz mein ek geet aur iske music director the Ilaiyaraaja. Aur movie thi Mood Pani.
1: Well, happy birthday from Pete
2: and Sue
1: McMahon. Yeah. 50 years of fabulous broadcast from 2XX. I was back there in the early days. Such a wonderful thing, community radio.
0: दोस्तों किसी भी कलाकार के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ता है. इलैयाराजा के लिए वह क्षण था. दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग का केंद्र था. चेन्नई की ओर प्रस्थान किया. उस समय चेन्नई, जिसे तब मद्रास कहा जाता था, ये दक्षिण भारतीय फिल्मों का केंद्र था. यहीं सपने बनते थे और यहीं टूटते भी थे. लेकिन इलैयाराजा केवल सपने लेकर नहीं आए थे, वे सीखने की भूख लेकर आए थे. उन्होंने प्रसिद्ध संगीत शिक्षक धनराज मास्टर से पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया. यहीं उन्होंने संगीत संयोजन, हार्मनी, काउंटरपॉइंट और ऑर्केस्ट्रेशन जैसी जटिल विधाओं को सीखा. यह बात उन्हें अपने समकालीन संगीतकारों से अलग बनाती है. वे भारतीय लोक धुनों को पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा के साथ जोड़ सकते थे. वे बांसुरी और नादस्वरम के साथ स्ट्रिंग सेक्शन का ऐसा मेल बना सकते थे जो पहले शायद ही किसी ने सुना हो. उनका संगीत गांव और दुनिया दोनों के को साथ लेकर चलता था.

सुंदरी कन्नल, ये था फिल्म थलापति से एक गीत और इसको संगीतबद्ध किया इलैयाराजा ने और इसके लिरिक्स थे वाली के। गाने वाले थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी। 1970 और 1980 के दशक के बीच इलैयाराजा ने दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत में एक नई क्रांति ला दी। उनके गीतों में लोक संगीत था, शास्त्रीय संगीत था, पश्चिमी हारमोनी थी और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक गहराई थी। कई बार ऐसा होता था कि दर्शक फिल्म भूल जाते थे लेकिन गीत याद रह जाते थे। इलैयाराजा के साथ इसका उल्टा भी हुआ। उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्मों की कहानी का हिस्सा बन गया। दर्शक संगीत के माध्यम से पात्रों की भावनाएं महसूस करने लगे। आज ये बात सामान्य लग सकती है लेकिन उस समय यह एक नई सोच थी।

ये खूबसूरत गीत ये था फिल्म अवतारम से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका संगीत तो दिया ही था इलैयाराजा ने, लेकिन गाया भी इलैयाराजा ने एस जानकी के साथ। इस गीत को लिखा था वाली ने। इसी दौर में निर्देशक भारती राजा और इलैयाराजा की जोड़ी बनी। भारती राजा गांवों की कहानियां लेकर आए, इलैयाराजा उन कहानियों की धड़कन बन गए। दोनों ने मिलकर तमिल सिनेमा को नया रूप दिया। जब स्क्रीन पर खेत दिखाई देते थे तो संगीत में मिट्टी की खुशबू महसूस होती थी। जब प्रेम कहानी दिखाई जाती थी तो धुनों में मासूमियत झलकती थी। यह केवल संगीत नहीं था, यह वातावरण की रचना थी।

Om Namaha Yeta S.P. Bala Subramaniam or S. Janaki ki awaz mein ek geet aur ise likha tha Veturi Sundarama ne aur film thi Geetanjali. Pichle dosto sangeet jagat mein Ilaya Raja ki pratibha ke bare mein anek kahaniyan sunai jati hain. कहा जाता है कि वे एक पूरी धुन कुछ ही मिनटों में तैयार कर लेते थे लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल धुन बनाना नहीं था वे पूरे ऑर्केस्ट्रा का संगीत संयोजन स्वयं लिखते थे कौन सा वायलिन कहां बजेगा कौन सी बांसुरी किस क्षण प्रवेश करेगी किस समय ताल वाद्य की गति बदलेगी इन सभी बातों की विस्तृत रचना वे स्वयं तैयार करते थे आज डिजिटल तकनीक के दौर में यह सामान्य लग सकता है लेकिन उस समय यह असाधारण क्षमता मानी जाती थी उनकी संगीत पांडुलिपियां आज भी संगीत छात्रों के लिए अध्ययन का विषय अभी भी बनी हुई हैं

आमनी पाडवे. ये था फिल्म गीतांजलि से एक गीत. इसे भी गाया था एसपी बाला सुब्रमण्यम ने और इसका संगीत दिया था इलिया राजा ने. मित्रों, समय बड़ी तेजी से दौड़ जाता है, पता ही नहीं चलता. तो मेरा अब इस कार्यक्रम का समय भी खत्म होता जा रहा है. आज हमने रेडियो हार्मनी पर आपको एक विशेष प्रस्तुति दी और वो था इलिया राजा, उनकी कहानी और उनका संगीत. आज उनका जन्मदिन पड़ता है. तो इस शो को ख़त्म करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं. अगले बुधवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक 98.3 FM पर लोगों द्वारा संचालित रेडियो 2XX FM पर फिर से आपका साथ रहूंगा. तब तक के लिए अरविंद गुप्ता की ओर से अलविदा और शुभ रात्रि.